0: हुनुहुन्छ रेडियो साइनो 89.8 MHz।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

हमें भी ऐसे पीछा करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंडे हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो।